This is SBS South Asian.

0: भी आए।
1: YouTube पे करे वीडियो ट्रेंड तेरा, लौंडा बनना चाहे बेबी बेस्ट फ्रेंड तेरा, जैसे कमर हिलाए कभी दाएं कभी बाएं, तेरा स्वैग और नखरा भी एंड तेरा।
2: अच्छा सुन, तेरी बातें टू मच है, पर लौंडे का स्वैग देसी टच है, तेरे यार का नाम बोलो शहर में, मम्मी कसम बेबी बातें

0: अभी आप राहत फ़तेह अली ख़ान और निशा शर की आवाज़ में पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का ओएसटी सुन रहे थे। और एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब वापस आएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में सुनवाएंगे ईंधन की बचत के कुछ अमली तरीक़े।
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: PS Audio.
6: Play button दबाइए, नई दुनिया पाइए.
7: 了解澳大利亚，准备好了吗
8: ？SBS Chill,
9: Chill. SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
12: Far from the partisan politics.
13: 60 से ज़्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मूसीकी, पसंदीदा पॉडकास्ट, सौ तो आहंग की दुनिया तक पहुँचने के लिए SBS Audio app डाउनलोड कीजिए.
14: sbs.com.au/audio.
0: आप हैं SBS उर्दू के साथ, मैं हूं आपका मेज़बान रिहान अलवी। प्रोग्राम में आगे चलकर और भी बहुत से दिलचस्प और मालूमाती सेगमेंट्स आ रहे हैं। आपको पाकिस्तान भी लिए चलेंगे, जहां ईरान अमेरिका माहदे के लिए सफारतकारी की मुहिम जारी है, कोर कमांडर का इजलास हुआ है, अडियाला जेल में कशीदगी है और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने हड़ताल का ऐलान किया है। ये सब बातें आप पाकिस्तान रिपोर्ट में सुनिएगा। इसके अलावा एक टैलेंटेड नौजवान से भी आपको मिलवाएंगे, जिनको ऑस्ट्रेलिया की बेसबॉल टीम में किया गया है। ये सब कुछ ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के बाद। आइए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में, सुनते हैं ईंधन के अखराजात को कम करने के कुछ अमली तरीके।
15: आप ऑस्ट्रेलिया को जानने में मदद के लिए SBS ऑडियो का तैयार करता पॉडकास्ट ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन सुन रहे हैं।
16: सामईन, ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें ऑस्ट्रेलिया भर में घरेलू बजट पर दबाव डाल रही हैं और बहुत से लोगों के लिए ये उनके सफ़र करने के तरीके को भी बदल रही हैं। तो आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन छोड़े बगैर ईंधन के अखराजात कम करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? इस किस्त में हम पेट्रोल पर पैसे बचाने के सादा और अमली तरीके देखेंगे और सुनेंगे कि ऑस्ट्रेलियन शहरी किस तरह खुद को ईंधन की कीमतों के मुताबिक ढाल रहे हैं। सुनते हैं खुशामदेद ऑस्ट्रेलिया। बहुत से लोगों के लिए जो काम और ख़ानदान के दरमियान तवाज़ुन रखते हैं, ड्राइविंग रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, कुछ ड्राइवर्स अपनी आदत पर दोबारा गौर कर रहे हैं। मिंजल तामराकर हफ्ते में 3 दिन मेलबर्न और जीलोंग के दरमियान तकरीबन 70 किलोमीटर सफ़र करते हैं। कुछ अरसे पहले तक वो अक्सर अपनी गाड़ी पर सफ़र करते थे, लेकिन अब वो ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं।
17: Previously, I used to travel by car sometimes and go by train sometimes, but with the recent increase in fuel prices, now I have opted to use the public transport.
16: ट्रेनों पर मुंतकिल होने का मतलब है कि सफ़र लंबा होगा, लेकिन उन्हें पैसे बचाने में मदद दे रहा है। जितनी रकम वो पहले 2 हफ्ते से ज़्यादा ईंधन पर खर्च करते थे, अब उतनी ही सिर्फ 1 हफ्ते की ड्राइविंग के लिए है। ये इजाफी खर्च उनकी बचत पर असरअंदाज हो रहा है।
17: Not only the fuel, like the other prices has also gone up because of the fuel prices. So yeah, it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies.
16: मंजिल का तजर्बा ऑस्ट्रेलिया भर में बहुत से लोगों के जज्बात की अकासी करता है। मार्च 2026 में नेशनल रोड्स एंड मोटर्स एसोसिएशन के एक सर्वे से पता चला कि ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स के निस्फ से ज़्यादा ड्राइवर्स ने अपनी ड्राइविंग की मकदार कम कर दी है। कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे ईंधन बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा अफराद एक ही गाड़ी इस्तेमाल करें या फिर एक से ज़्यादा कामों के लिए गाड़ी एक ही मर्तबा इस्तेमाल की जाए। NRMA के पीटर खौरे कहते हैं ईंधन की कीमतें कम हो सकती हैं लेकिन इसमें वक्त लगेगा।
5: It'll take some months, unfortunately, for prices to get back to where they were in February prior to the war.
16: इस दौरान छोटी छोटी तब्दीलियां फर्क डाल सकती हैं। लागत कम करने के लिए ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने आरजी तौर पर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स को आधा कर दिया है। ये इकदाम 30 जून तक नाफिज रहेगा लेकिन माहिरीन कहते हैं रोजमर्रा की ड्राइविंग की आदत ईंधन के इस्तेमाल को कम करने में भी मददगार हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कई मुख्तसर सफर एक सफर में शामिल करने से ईंधन की बचत हो सकती है। आपकी गाड़ी के टायर में अगर हवा सही भरी हुई है इससे ईंधन के इस्तेमाल में 5% तक कमी आ सकती है और आपकी रफ्तार भी अहम है। 110 किलोमीटर फी घंटा के बजाय 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ईंधन के इस्तेमाल में नुमाया कमी आ सकती है। पीटर खोरे कहते हैं और भी सादा आदात हैं जिन्हें जहन में रखना चाहिए।
5: Don't carry unnecessary weight in the vehicles. Don't drive with a lead foot, especially off the lights. And also make sure that if you're driving around town and it's a nice day, you turn the air conditioner off and put the windows down. But if you're driving on a highway and you're doing a higher speed, turn the air conditioner on, put the windows up, and that will reduce drag.
16: Lead foot का मतलब है कि बहुत तेजी से रफ्तार तब्दील करना, ऐसी चीज जो ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करती है। ये सब छोटी छोटी तब्दीलियां मिलकर ईंधन के इस्तेमाल पर असर डाल सकती हैं।
5: It can if you do all of those things combined. So in isolation, you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tires, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work harder to move. But if you do all of those things, the tires, making sure you put the windows up on a highway, don't carry unnecessary weight, don't drive with a lead foot, the savings can be significant. Some researchers suggested upwards of a 30% reduction in fuel consumption. So it's worth doing.
16: पैसे बचाने का एक और आसान तरीका है भरने से पहले ईंधन की कीमतों का मुवाजना करें। कंज्यूमर ग्रुप चॉइस से ताल्लुक रखने वाले लियाम कैनेडी कहते हैं कि बहुत से ड्राइवर्स को ये एहसास ही नहीं होता कि पेट्रोल स्टेशंस के दरमियान कीमतें कितनी मुख्तलिफ हो सकती हैं।
8: One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to because it's the most convenient and fill up there, but may not realize that they're being charged way more than they would if they were to go around the corner and fill up somewhere else.
16: Australia ke har riyasat aur ilaqe mein apps ya websites maujood hain jo aapko qareebi sabse sasta eendhan talash karne mein मदद देती हैं। न्यू साउथ वेल्स में एक सरकारी ऐप है जिसे फ्यूल चेक कहते हैं, जबकि विक्टोरिया में भी एक मुशाबा सरकारी ऐप मौजूद है जिसे सर्व सेवर कहते हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल ज्यादा मेहनत तलब भी नहीं है और आपके पैसे भी बचा सकता है। ऐसे लोगों के लिए जो सख्त बजट संभाल रहे हैं, जैसे तलबा, खानदान या बैरून मुल्क पैसे भेजने वाले अफराद, ईंधन पर थोड़ी सी बचत भी फर्क डाल सकती है। मंजिल के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल होना आसान इंतखाब नहीं रहा लेकिन ये उन्हें बढ़ते हुए अखराजात को संभालने में मदद दे रहा है और बहुत से ऑस्ट्रेलियंस के लिए वक्त और पैसे के दरमियान तवाज़ुन ज्यादा अहम होता जा रहा है। सामईन, ईंधन की कीमतें अभी गैर यकीनी हैं, इसलिए जहां मुमकिन हो कम पेट्रोल इस्तेमाल करना पैसे बचाने के सबसे आसान तरीकों में से एक हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश के अखराजात के इंतजाम के बारे में मजीद अमली मशवरों के लिए ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन वेबसाइट मुलाहिजा करें या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सुने और हमें फॉलो करें। सामईन, आप सुन रहे थे SBS उर्दू पर खुश आमदेद ऑस्ट्रेलिया और मैं हूं वर्दा वकार।
15: आप SBS ऑडियो का पॉडकास्ट सुन रहे थे। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन की दीगर इकसात सुनने के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाइए।
0: और ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में और भी बहुत से मालूमाती सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं और हर हफ्ते ये प्रोग्राम में शामिल भी ज़रूर होता है। इसके बहुत से मौजूदात ऐसे हैं जो यकीनन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के बहुत करीब होंगे और आपकी मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिजीनियस और मुकामी अफराद की कहानियाँ भी ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में, SBS एग्जामिन में और SBS पैसिफिक में हम आपके लिए लेकर आते हैं। अब एक वक्फ़ा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात एक टैलेंटेड जवान मकसद शाहिद से करवाएंगे। इसके अलावा वक्फे के बाद आपको हम पाकिस्तान भी लिए चलेंगे और वहां जानेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में खुद हुकूमत हड़ताल पर जा रही है। ये सब दिलचस्प खबरें और करंट अफेयर की बातें और मालूमाती और दिलचस्प सेगमेंट्स अब से कुछ देर बाद हम आपको सुनवाएंगे।
12: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
14: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
18: SBS Radio से लुत्फंदोज हो रहे हैं. हमारे Facebook पेज पर गुफ्तगु करें, हमें पसंद करें और अपने ख्यालात का इजहार करें. SBS उर्दू Facebook पर.
0: आप सुन रहे हैं SBS उर्दू. हमारी براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو سپہر 3 بجے آسٹریلین ایسٹرن وقت کے مطابق SBS پاپ دیسی پر نشر ہوتی ہیں. یہاں ہم آپ کو یہ یاد دہانی کرا دیں کہ ہمارے پروگراموں کے منتخب حصے آپ sbs.com.au/urdu پر سن سکتے ہیں, اور ساتھ ہی آپ اپنے میسیجز بھی آپ فیس بک پر ہم کو ان باکس کر سکتے ہیں facebook.com/sbsurdu. اور یہ فیس بک پیج ہمارا وہی ہے جہاں آپ کو ملتی ہیں ویڈیوز, اہم خبروں کی ڈیلی پوسٹ, تصاویر کے البمز, بریکنگ نیوز اور آسٹریلیا بھر کی کمیونٹی خبریں. اس کے علاوہ ہم انسٹاگرام کے اوپر چھوٹی چھوٹی 90 سیکنڈز کی شارٹ ریلز بھی پوسٹ کرتے رہتے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں اس کو انگیجمنٹ ملتا ہے. آپ بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیے, اور اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا instagram.com/sbsurdu پر, اور فیس بک کے لیے facebook.com/sbsurdu پر. اس کے علاوہ ہماری موبائل ایپ SBS آڈیو کے نام سے ایپل اور اینڈرائڈ ڈیوائسز کے لیے بالکل مفت موجود ہے. sbs.com.au/audio پر جائیے, اس پہ اردو لینگویج کو سیٹ کیجیے اور ریمائنڈر کو بھی سیٹ کر لیجیے, تو اردو پروگرام جب بھی آن ایئر جائے گا اور جب بھی ہمارے پوڈ کاسٹ پبلش ہوں گے تو آپ کو خود بخود نوٹیفیکیشن آ جائے گا. آئیے اب آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کرواتے ہیں جسے آسٹریلیا کی نیشنل بیس بال ٹیم میں سلیکٹ کیا گیا ہے. یہ انٹرویو اور ہے ٹیلنٹڈ نوجوان مقصد شاہد اور ان کے والد سے. مقصد نے انگریزی میں باتیں کی ہیں, اور یہ آڈیو ہمارے پروڈیوسر محمد ریاض نے ریکارڈ کیا ہے, اور اس کی ویڈیو بھی آپ بہت جلد SBS اردو کے فیس بک اور انسٹاگرام پیجز پر دیکھ سکیں گے.
19: On the side with cricket, and you know, a lot of the things from cricket are transferable to baseball. You know, my mom and dad were very supportive of me.
20: So isme mera koi contribution hai, agar koi contribution hai to sirf maqsad ka aur uski mom ka hai.
21: Samin, is podcast ke sath main hu Muhammad Riaz. Is podcast mein hum aapko milwayenge ek aise ba salahiyat naujawan khiladi se jinhone apni mehnat, lagan aur mustaqil mizaji ke zariye khelon ki duniya mein ek numaya maqam hasil kiya hai. Hamare sath maujood honge is podcast mein Maqsad Shahid, jinka taluq Sydney, Australia سے ہے. وہ بیس بال کے میدان میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. حال ہی میں انہیں آسٹریلیا کی قومی بیس بال ٹیم میں شمولیت کی دعوت موصول ہوئی ہے, جو ان کے کریئر کا ایک اہم اور قابل فخر سنگ میل ہے. ان کی کہانی صرف ایک کھلاڑی کی کامیابی نہیں بلکہ آسٹریلیا کے ملٹی کلچرل معاشرے کی بھی عکاسی کرتی ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ ان کے اس متاثر کن سفر کے بارے میں, کن چیلنجز کا سامنا کیا انہوں نے, کس طرح اپنی محنت سے اس مقام تک پہنچے, اور مستقبل کے حوالے سے ان کے کیا عزائم ہیں. ساتھ ہی ہم بات کریں گے ان کے والد شاہد ملک سے, جنہوں نے اس سفر میں نہ صرف اپنے بیٹے مقصد شاہد کی رہنمائی کی بلکہ ہر قدم پر ان کا ساتھ دیا. سماعت کیجیے.
19: I'm feeling very happy. First of all, you know, I'd like to thank my family and my friends for, you know, sticking beside me through this journey. And, you know, I'm really happy, really grateful for my opportunities, and I couldn't be more happier.
1: And tell me, your family is originally from Pakistan, but you born and raised here in Sydney. How did your baseball journey begin?
19: Growing up, I played a lot of cricket in my childhood. I started picking up baseball on the side with cricket, and you know, a lot of the things from cricket are transferable to baseball. I mean, they're quite similar. I started playing baseball, you know, started getting good at it, started taking coaching training as well, and from then on, you know, I just started playing baseball, and you know, I got a bit good at it. My family always stuck by my side, whether it was basketball, cricket, baseball. You know, my mum and dad were very supportive of me no matter what sport I picked. I know baseball isn't very common in Pakistan, but you know, my family and my dad, my mum, they were very supportive when I picked up baseball and told them, you know, I want to go further down with baseball. I thought that maybe when I was around 16, 17 years old, I started getting better. I was pitching a lot faster than the kids my age. You know, I was playing above grade, above my age group. So I think then on, I kind of noticed, you know, that I will take it far.
1: So you are playing, now you're a professional athlete. You are playing on a national level as well. And you started with the club level, on a state level. How was your dad journey when you did start?
19: It was very good. Like I said, you know, I was very consistent throughout everything. I think consistency is key, and I stayed consistent. I stayed motivated to the goals, and I think through that, it just got better slowly, slowly. I started improving, getting better, having a positive mindset as well. I think that's what, you know, influenced this journey.
1: So when very first time you heard that you are like you got selection on a state level, on a professional level, how was that moment?
19: It was very happy, and I was very happy, and you know, it just felt like all my hard work paid off. You know, obviously my family was very, very happy, very excited. Same with my friends, and it was a big, you know, it was a sigh of relief because you know, I just, you know, everything I worked for, finally, you know, I'm thankful that my university, you know, is very supportive. All my teachers are supportive. The coaching staff there is very supportive too. So, you know, I have that flexibility as well. And, you know, I have that kind of mindset as well. Everyone's been supportive. All my teachers at uni and everyone. I feel great. It's a good title to have next to your name, that you play internationally and you're a professional athlete. You know, it's, I take it with a lot of pride, and, you know, it's, I'm very humble about it too. It's a very good feeling.
1: Now, how supportive has Australia's multicultural society and support system been?
19: It's been very supportive. Australia is obviously a very multicultural you know, country as well. No matter what sport you're in, basketball, baseball, cricket, you'll see people with you know, different races and religions, and it's been great. It's been supportive. You know, all my coaches, my teammates, and you know, everyone with my especially my parents, it's been great. It's been very good support system.
1: And what do you think, like, it's easier for kids born here to progress in sports?
19: I think with resources, I think kids born here, it's a little bit easier.
1: Especially, you are not from here, you are from, or your family background is from overseas.
19: Yeah.
1: Then how easy or difficult it is?
19: I think, it was very easy for me. You know, I had the resources. I had, you know, obviously clubs, like basketball clubs, baseball clubs I could join and stuff like that. Also, like, you know, parks and stuff. So there was plenty of resources to my help. So I think, people born here have more of an advantage to making it at the next level.
1: And what message do you have for young people, especially from Pakistani background?
19: I think, you know, keep staying motivated, keep being yourself, you know. Don't let anyone's words come to you, because I know, you know, especially in South Asian communities, we're not deemed to be, you know, good at sport. So I think, you know, just don't listen to that, and keep pushing yourself and stay consistent.
1: So aapko aap kaisa lagega jab aap एक बड़े क्राउड के सामने नेशनली इंटरनेशनली प्रोफेशनली जब आप कितना आपको शिद्दत से इंतज़ार है कि आप उनके सामने जब वो इतना क्राउड होकर आप आएंगे और आप खेलेंगे दुनिया आपको देखेगी
19: I'll feel amazing, I'll feel great. You know, the first people I want to see in the crowd is obviously my mom and dad and my sisters, my family. I'll feel great, and they will be you know, it will be an amazing feeling. I can't describe it.
20: जी बहुत शुक्रिया. मैं सबसे पहले SBS का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका फ्राहम किया कि मैं कुछ बता सकूं अपने बेटे के बारे में और अपने बारे में कुछ बता सकूं. मैं 1989 में यहाँ आया था.
6: ओरिजिनली हम कराची से बिलोंग करते हैं. मेरा बेटा यहीं पैदा हुआ था, तो शुरू से ये काफ़ी इसको स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट था, और इसने हर किस्म के स्पोर्ट्स खेले. क्रिकेट क्रिकेट में ऐसा था कि ये ग्रीन शील्ड शायद आपकी कुछ होती है, मेरा बेटा बता रहा था, तो उसमें वो वहाँ तक गया है, लेकिन उसके बाद वो उससे आगे नहीं जा सका. बट एनीवे, इसके अलावा ये दूसरे स्पोर्ट्स भी खेलता रहे, और लेकिन जूं जूं ये बड़ा होता गया तो इसका और जो स्किल्स थे स्पोर्ट्स में वो डेवलप होते गए, और माशाल्लाह अब तो ये नेशनल लेवल पर आ गया है. हमें बड़ी खुशी है इस चीज़ की, और ना सिर्फ ये कि बेसबॉल बल्कि दूसरे स्पोर्ट्स में भी बहुत इसने एक्सेल की है, तो हमारे लिए ये बड़ी खुशी. और
1: तो कैसा लगेगा कि जब आपको इसको आप इतने हज़ारों की तादाद में लोग बैठे होंगे, आप भी होंगे, इसको देखना कितना शिद्दत से इंतज़ार करें इस मौके का?
6: मैं जी बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ, और मुझे हमें इंतहाई खुशी होगी. और मैं मेरे दोस्तों ने भी मुझे रिंग कर कर कहा है कि आपका कंट्रीब्यूशन है. मैं सच्ची बात बताऊँ, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है, अगर कोई कंट्रीब्यूशन है तो सिर्फ मकसद का और इसकी मम का है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली इसलिए मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने मुबारकबाद दी है, तो मैंने उनसे यही कहा कि यार देखिए मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बल्कि जब ये सिलेक्ट हो गया तो जिसने बताया, तो मैंने कहा अच्छा बेटा, तो मुझे तो खैर बेसबॉल का पता भी नहीं था सही तरह, और मुझे पता भी नहीं था क्या कहते हैं थ्रो पिच, वो बेटा ही समझाता रहता है, तो ये तो मैं इसका कंट्रीब्यूशन इसको और इसकी मम को देता हूँ. बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑस्ट्रेलिया का, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं. ना सिर्फ ये है कि

अभी आप सुन रहे थे नैया नूर की आवाज़ में ये माजी का खूबसूरत गीत। और अब वक्त काफ़ी करीब है आपसे इजाज़त देने का। आपको ये याद दहानी ज़रूर करा दूं कि आने वाले दिनों में हम हद से मुतालिक बहुत से सेगमेंट भी प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, और एक पॉडकास्ट सीरीज़ भी हमारी प्रोड्यूसर वरदा वकार ने तैयार की है। और इसका कौन सी अद्वियात हज के दौरान आपके साथ यहाँ ऑस्ट्रेलिया से जा सकती हैं, और इसके अलावा वहाँ का एक मोबाइल ऐप भी है जिसके ज़रिए आपका हज आसान हो सकता है, उसके बारे में भी मालूमात हैं। तो ये सब कुछ आप आने वाले दिनों में सुनते रहें, देखते रहें sbs.com.au/urdu पर। और चलते चलते क्यों ना हज की मुनासबत से आपके लिए एक नाते रसूल मकबूल पेश करते जाते हैं। आप इस नात को सुनिए, इसका लुत्फ लीजिए, और मुझे यानी अपने आज के मेज़बान रेहान अलवी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ। फिर मिलेंगे गर खुदा लाया, अल्लाह ने के बान

जी दोस्तों, इस गीत के नाल ही तुहाडी कोलों लैंदे हां इजाजत, पर इस वादे के नाल कि तुसी जुड़े रहोगे SBS पंजाबी दे नाल, ते असी भी प्रोमिस करते हैं तुहाडे लई वधिया तो वधिया कॉन्टेंट लैके आते रहांगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखियो, मैनू MB सिंह नूं दिओ इजाजत, मिलते हाँ एक नवे प्रोग्राम विच, सुनते रहो SBS पंजाबी।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: नया दिन, नई शाम और एक नया शो. SBS हिंदी पर आपका स्वागत है. मेरा नाम है नबील. शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राज के वुरुंजरी और वुईवुरुंग लोगों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर यह कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो में कौन कौन सी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. आज के शो की जो पहली रिपोर्ट है, ग्लोबल एनर्जी में रुकावटों के बीच ऑस्ट्रेलिया और जापान ने आर्थिक और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए समझौतों पर दस्तखत किए हैं. इससे जुड़ी जानकारी लाएंगे आपके लिए. उसके बाद होगी इंडिया रिपोर्ट, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की कुछ खास खबरें. फिर बात एक नई नेशनल रिपोर्ट की, जिसमें पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया में 340,000 से ज़्यादा प्रवासी और रेफ्यूजी महिलाएं अपनी क्वालिफिकेशन और स्किल से नीचे स्तर की नौकरियों में काम कर रही हैं. सिर्फ 41% महिलाएं ही अपनी योग्यता के मुताबिक जॉब्स में हैं. इस रिपोर्ट में एक माइग्रेंट महिला के अनुभव भी शामिल है. और अंत में सिडनी के एक चाय बार की कहानी, जो सिर्फ एक व्यवसाय ही नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का एक नया जरिया बन रहा है. इसकी शुरुआत एक फॉर्मर सोल्जर ने की है. सालों वाली खास चाय और अलग अलग जगहों से आए लोगों की कहानियों के साथ ये जगह कैसे बन गई है खास, इसको जानेंगे. चलिए, ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी एक एक करके, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं आज का न्यूज फ्लैश. बुधवार 6 मई की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. ट्रेजरर जिम चामर्स ने कहा है कि वो जानते हैं कि रिजर्व बैंक के ब्याज दरों पर ताज़ा फैसले से ऑस्ट्रेलियंस पर कॉस्ट ऑफ लिविंग का दबाव और बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मंगलवार यानी 12 मई को पेश होने वाला फेडरल बजट इसी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इसमें खर्च पर नियंत्रण और बड़ी बचत पर जोर दिया जाएगा. रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इन्फ्लेशन अब भी चिंता का विषय बना हुआ है, इसलिए ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं. बैंक का कहना है कि वैश्विक कारणों से कीमतों पर दबाव बना हुआ है और इसी के चलते सख्त नीतियां जरूरी हैं. जिम चामर्स ने इस बयान को भी खारिज किया है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे सरकारी खर्च जिम्मेदार हैं. सिडनी के एक नेशनल पार्क में कई एजेंसीज मिलकर एक तलाशी अभियान चला रही हैं, जिसमें एक व्यक्ति के पानी में डूबी कार के अंदर फंसे होने की आशंका है. पुलिस को शक है कि आज सुबह करीब 1:15 पर सिडनी के दक्षिणी हिस्से में ऑडली वायर में एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गई, जिसमें 2 लोग सवार थे. इसके बाद कार फौरन ही पानी में डूब गई. 20 वर्षीय ड्राइवर किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन गाड़ी में मौजूद पैसेंजर का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मौके पर क्राइम सीन स्थापित कर दिया है और मामले की जाँच जारी है. फेडरल सरकार अगले हफ्ते आने वाले बजट के तहत ऑनलाइन होने वाली एक्सट्रीमिस्ट गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक नया सेंटर स्थापित करेगी. ये सेंटर स्पेशलिस्ट इन्वेस्टिगेटर्स और एनालिस्ट को एक साथ लाएगा, ताकि संभावित खतरों की पहचान की जा सके और उन्हें रोका जा सके. अधिकारियों ने ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन में बढ़ोतरी की चेतावनी दी है. $74 मिलियन का ये प्रोग्राम ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी ASIO और ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस द्वारा मिलकर चलाया जाएगा. इसका उद्देश्य हाई रिस्क यानी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर नज़र रखना है. गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्ग ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही चाइल्ड प्रोटेक्शन और साइबर क्राइम जैसे मामलों के लिए समर्पित केंद्र मौजूद हैं, और ये नई पहल तेजी से बदलते ऑनलाइन खतरों का सामना करने की दिशा में अगला कदम है. दुनिया भर में जेंडर इक्वालिटी प्रोग्राम्स को फॉरेन एड बजट्स में कटौती के कारण बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है. लोई इंस्टीट्यूट के नए रिसर्च में पाया गया है कि ग्लोबल एड का केवल 2.3% हिस्सा मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए हेल्थ केयर, एजुकेशन और सेफ्टी की पहुंच सुधारने पर खर्च होता है. इसमें से भी आधे से अधिक फंडिंग के खत्म होने की आशंका है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और कैनेडा जैसे देश अपनी एड कमिटमेंट्स में कटौती कर रहे हैं. इस रिपोर्ट के ऑथर ग्रे स्टैनहोप ने कहा है कि जेंडर इक्वालिटी को सही तरीके से फंड ना करना सिर्फ एक विकास संबंधी समस्या नहीं है, बल्कि ये एक विदेश नीति से जुड़ा जोखिम भी है। लो इंस्टीट्यूट का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया, जिसने अपनी एड कमिटमेंट्स में कटौती नहीं की है, इस प्रयास में नेतृत्व करने की भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ समझौते को अंतिम रूप देने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे अमेरिकी अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोक दिया गया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया गया है, लेकिन ईरान के पोर्ट्स पर लगाया गया US नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये कदम पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के अनुरोध पर उठाया गया है। इससे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा था कि मध्य पूर्व में सीजफायर अभी भी जारी है और ईरान के खिलाफ किया गया पहला बड़ा US मिलिट्री ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। और अब खबर भारत से। भारत सरकार ने मंगलवार को गुजरात में 2 नए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मंजूरी दी है, जिनमें लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन परियोजनों से करीब 2,230 स्किल्ड जॉब्स बनने की उम्मीद है। इसके साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जिनमें कुल निवेश लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये पहुँच गया है। इन यूनिट्स में बनने वाले प्रोडक्ट्स का उपयोग टीवी, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, इन कार सिस्टम्स, स्मार्ट वॉचेस और एक्सटेंडेड रियलिटी यानी XR ग्लासेस जैसे डिवाइसेस में किया जाएगा। कई सेमीकंडक्टर प्लांट्स के 2026 और 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है। ये था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और अब न्यूज फ्लैश के बाद शो की पहली रिपोर्ट। उस ग्लोबल एनर्जी में रुकावटों और लड़खड़ाती हुई विश्व व्यवस्था के बीच ऑस्ट्रेलिया और जापान ने आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए इसी पर जानते हैं थोड़ा और। पूरी खबर इस रिपोर्ट में ला रही हैं स्वाति शर्मा।
3: जापान की तथाकथित आयरन लेडी और पहली महिला प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची एक नेता के रूप में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आई हैं। यह दौरा उस ऐतिहासिक नारा संधि के 50 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है, जिस पर मैल्कम फ्रेजर और प्रधानमंत्री मीकी ताकेओ ने हस्ताक्षर किए थे और जिससे द्विपक्षीय दोस्ती और सहयोग की नींव पड़ी थी। वैश्विक ऊर्जा संकट और अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था में बढ़ती अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि यह दौरा इन संबंधों को और मजबूत करेगा।
4: Our friendship has never been closer, and in these uncertain times, friendships matter more than ever. The world has changed immensely since 1976, but the strength of Australia and Japan's friendship and the spirit of generosity and respect that our people share is stronger than it has ever been.
3: पूर्व हैवी मेटल ड्रमर से विश्व नेता बनी इस नेता ने प्रधानमंत्री अल्बनीजी के लिए उपहार भी लाए, जापानी मेटल और रॉक बैंड्स के 2 विनाइल रिकॉर्ड। इसके बदले में जापान की ताकाइची को ACDC बैंड के संस्थापक मैल्कम यंग की तस्वीर के साथ एक साइन किया हुआ ड्रम स्किन भेंट किया गया।
4: We will continue our discussions including on issues like heavy metal music and other important matters of state.
3: नए समझौतों के तहत दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा और व्यापार में सहयोग को और गहरा करने की घोषणा की। आर्थिक सुरक्षा पर एक समझौता ऊर्जा उत्पादों, महत्वपूर्ण खनिजों और खाद्य जैसे सामानों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते हुए इस समझौते के तहत दोनों देशों को आर्थिक सुरक्षा उपायों और जोखिम कम करने के कदमों पर एक दूसरे से परामर्श करना होगा।
4: Firstly, the joint declaration on economic security cooperation that we signed today will make us more resilient to economic shocks and uncertainty, enable us to further build trusted supply chains, accelerate development of critical technologies such as AI, quantum and biotechnology, and support regional economic resilience.
3: इसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा पर एक समझौते में दोनों नेताओं ने ईंधन और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। जापान ऑस्ट्रेलिया को रिफाइंड पेट्रोलियम और डीजल सप्लाई करने का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। ऑस्ट्रेलिया जापान रिसर्च सेंटर के निदेशक शीरो आर्मस्ट्रांग ने एसपीएस को बताया कि जापान ऊर्जा उत्पादों के लिए ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है।
5: It's got about 16.5% energy self-sufficiency, and Australia is by far the largest supplier of energy. One third of Japan's energy needs comes from Australian gas and coal. So we play an important role in underwriting Japan's energy security. And that means we have to avoid creating uncertainty and remain a stable and secure supplier.
3: यह समझौता ऐसे समय में आया है जब एल्बनीजी सरकार पर गैस निर्यात पर 25% टैक्स लागू करने का दबाव बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार यह टैक्स हर साल ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था में 17 अरब डॉलर का इजाफा कर सकता है। हालांकि इस टैक्स के विरोधियों का कहना है कि इससे ऑस्ट्रेलिया की एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थिति कमजोर हो सकती है। शीरो आर्मस्ट्रांग का कहना है कि घरेलू नीति ऑस्ट्रेलियाई लोगों के हित में होनी चाहिए, लेकिन साथ ही क्षेत्र के प्रमुख साझेदारों को भी भरोसा मिलना चाहिए।
5: That doesn't mean we can't get domestic energy policy right. That's been uncertain for many years in Australia. But as we change our policies and get domestic energy policy right, we have to do so in a way that does not discriminate against our customers in Northeast Asia and provide certainty for them going forward.
3: इस दौरे के दौरान रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की भी प्रतिबद्धता जताई गई। मौजूदा समझौतों को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त बयान में एक दूसरे के क्षेत्रों में नए उपकरणों, उन्नत हथियारों और उभरती तकनीकों के परीक्षण को प्राथमिकता दी गई है। इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया और जापान ने ऑस्ट्रेलिया के जनरल क्लास युद्धपोतों को जापानी मोगामी क्लास फ्रिगेट डिजाइन में अपग्रेड करने के लिए बहु अरब डॉलर का अनुबंध किया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों ही अमेरिका के ऐतिहासिक सहयोगी हैं, लेकिन वे व्यापार और भौगोलिक रूप से चीन से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे अमेरिका के गठबंधनों को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है और चीन का प्रभाव फैल रहा है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग का कहना है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
5: The message to China, but also to the United States and the whole region, is that Australia and Japan stand for the rules-based system and an open global economy. And so the declarations on economic security, for example, are about bedding down that interest and cooperating more fully between the two countries at the highest level to help ensure the assumptions that we've worked on that are being overturned about the rules-based system and protection of openness maintain and we preserve this system we have while we work to create new rules, new standards that serve our interests going forward.
3: महत्वपूर्ण खनिजों पर भी एक समझौता हुआ जिसमें जापान चीन से अलग अपनी धातु आपूर्ति श्रृंखला को विविध बनाने की कोशिश कर रहा है। निवेश के लिए 6 प्रमुख परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें इस संबंध का मुख्य स्तंभ माना जा रहा है और जो आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को दूर करने पर केंद्रित है। स्काई न्यूज से बातचीत में व्यापार मंत्री डॉन फेरल ने कहा कि वे आने वाले हफ्तों में जापान का दौरा करेंगे ताकि इन समझौतों को आगे बढ़ाया जा सके।
6: I'm in fact 2 weeks' time. I'll be up there in Japan, continuing our discussions with Japan. You might recall after the Prime Minister's visit to Singapore, we met with our counterparts to put some flesh on the bone of these agreements. It's important that the document itself reflects what's agreed. Certainly, our discussions with Singapore has continued to result in us getting our fuel supplies. But also in the area of critical minerals. We really want greater investment from our allies in the region. There are wonderful opportunities in our critical mineral industry and we want Japan to be engaged in that process.
3: एक सख्त रूढ़िवादी नेता के रूप में सानाए ताकाइची की राजनीतिक पृष्ठभूमि एंथनी एल्बनीजी से काफी अलग है, लेकिन प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण रिश्ते में ये मतभेद पीछे रह जाते हैं।
5: That's almost irrelevant for the bilateral relationship. They share a deep interest in the bilateral relationship, Prime Minister Albanese and Prime Minister Takaichi, and the core interests of the stable regional order. So I heard Prime Minister Takaichi refer to Prime Minister Albanese as Anthony, and I think they're building a close rapport.
3: SBS News से सिडनी लैंग की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी पर प्रस्तुत किया स्वाति शर्मा ने। धन्यवाद।
7: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
8: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Well, it'd be better if I was French.
7: BoatU has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
9: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
7: Plus, GEICO can help BoatU cover what's on board, too.
9: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
7: It feels good to be BoatU. It feels good to GEICO.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
12: I'm Janice Peterson from SBS World News, and I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
13: SBS Learn English helps Australians speak, understand, and connect.
2: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है. मेरा नाम है नबील. और अगली रिपोर्ट से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना. 8 मई यानी कि परसों हम एक बहुत स्पेशल शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और ये है ख़ास मदर्स डे से जुड़ा. अक्सर घर में माँ सबका ख्याल रखती है, लेकिन रोज़ की भागदौड़ में वो अपना ख्याल रखना ही भूल जाती हैं. इस मदर्स डे हम बात करेंगे माओं के पोषण और सेहत की, ये ख़ास लाइव टॉक बैक के साथ. यानी स्टूडियो में उस दिन हमारे पास एक बहुत ख़ास मेहमान होंगी, एक डाइटिशियन होंगी पूर्वा गुलियानी, जो आपके सवालों के जवाब देंगी, वो भी लाइव शो के दौरान. तो आपको ये नंबर याद रखना है 04397997667, और शो जो कि हमारा 5 से 6 बजे के बीच होता है, इसके बीच आप ज़रूर कॉल करिएगा परसों और अपने सवाल तैयार रखिएगा. आप चाहें तो अपने सवाल SMS द्वारा भी हमें भेज सकते हैं 04397997667 उसी नंबर पर. लेकिन आपके SMS के साथ साथ हम चाहेंगे कि आप 8 मई शाम 5 से 6 बजे के बीच SBS हिंदी का ज़रूर शो सुनिए और कॉल भी ज़रूर करिएगा. तो इस स्पेशल प्रोग्राम में माओं की डाइट, रिकवरी, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी. तो ये ज़रूरी सूचना थी मदर्स डे के एक ख़ास टॉक बैक शो से जुड़ी. और अब आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं हमारी अगली रिपोर्ट, जो है इंडिया रिपोर्ट, जिसमें हम लेकर आए आपके लिए भारत की कुछ खास खबरें.
14: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी कामयाबी मिली है. सत्ताधारी TMC को हार का यहां सामना करना पड़ा है. 4 मई को आए इस परिणाम के बाद राज्य में कई जगहों पर हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें आ रही हैं. TMC और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कई स्थानों पर झड़प भी हुई है. कई जगह TMC के कार्यालय पर हमला हुआ है. संवेदनशील जगहों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है. इस राजनीतिक हिंसा में 2 लोगों की मौत भी हुई है. चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को निर्देश जारी कर शांति व्यवस्था तुरंत बहाल करने को कहा है. दंगाइयों के विरुद्ध तुरंत और कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा गया है. इधर TMC ने चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर सवाल उठाए हैं. भाजपा पर धांधली से चुनाव जीतने का आरोप लगाया गया है. देश के अन्य प्रमुख विपक्षी दलों ने TMC के सुर में सुर मिलाया है. इसे लोकतंत्र की हत्या बताया गया है. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD जैसे दल ने भाजपा पर धांधली कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया. ममता बनर्जी कह रही हैं कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी. चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर भड़कते हुए ममता बनर्जी कहती हैं,
8: I must say that when judiciary is not there, when election commission is biased, when government of India wants only one party rule, then how the people will get justice? It is the same for everyone. The wrong message is going to the world that you cannot fight democratically. All you are capturing forcefully. And narrative and negative, you have enough money, betting management. So we will bounce back. We will fight it out.
14: पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कहते हैं,
15: Why the press would be not there? Why the CCTV would not work? Why the CCTV will not be shown by the outsiders? Where is the transparency of the counting? There is no transparency of the counting.
14: अगले मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को देखा जा रहा है। उन्होंने ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा,
16: हारने का बाद बहुत बोलता है, हारने का पहले तो नहीं बोला, एसआईआर के खिलाफ बोला, फाइनल वोटर लिस्ट निकला, वही वोटर लिस्ट के ऊपर चुनाव लड़ा, कैंपेन किया, कैंपेन के दौरान बोल रहा हम लोग आ रहा है, एग्जिट पोल आया, बोले एग्जिट पोल झूठा है, काउंटिंग सेंटर में गया, जब हारने लग गया तब बोला ये मीठा नहीं है।
14: ममता बनर्जी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की राजनीति खत्म होने का दावा करते हुए शुभेंदु अधिकारी कहते हैं,
16: ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा।
14: ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने की धमकी के बाद चुनाव आयोग एक्शन में आया है। आयोग ने नई विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने विपक्ष की आलोचना और आरोपों को खारिज करते हुए प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बताया है। बंगाल के बाद चर्चा दक्षिणी राज्य केरल और तमिलनाडु की। इन दोनों राज्यों में भी सत्ता का परिवर्तन हुआ है। केरल में एलडीएफ सरकार को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ ने यहां सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बताए जा रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में फिल्मों से राजनीति में आकर कमाल करने वाले जोसेफ विजय मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ ले सकते हैं। उनकी पार्टी टीवी के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, हालांकि उसे बहुमत से 10 सीटें कम मिली हैं। 234 सीटों वाली विधानसभा में टीवीके के 108 विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक चुने गए हैं जो टीवीके को समर्थन दे सकते हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल इस बारे में कहते हैं,
17: आईएनसी इज क्लियर दैट द मैंडेट इन तमिलनाडु इज फॉर अ सेक्युलर गवर्नमेंट कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट। आईएनसी इज डिटरमाइंड नॉट टू हैव द बीजेपी एंड द प्रॉक्सीज रन द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इन एनी मैनर। तिरुविजय हैज स्पोकन अबाउट द ड्राइंग।
14: पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर सांसदों के उत्पीड़न का आरोप लग रहा है। पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 7 राज्यसभा सांसदों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। पार्टी का साथ छोड़ने वाले सांसदों ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की। राष्ट्रपति के सामने इन सांसदों ने अपनी बात रखी है। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद राघव चड्ढा ने कहा,
18: आम आदमी पार्टी आज अपनी नाव को डूबता देख वे सांसद जिन्होंने अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया आम आदमी पार्टी से, उनके खिलाफ एक बहुत ही डेंजरस वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। हमने 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी को त्यागा, भारतीय जनता पार्टी में विलय करी और उसके बाद से लगातार हमारे तमाम सांसदों का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनर हरभजन सिंह साहब को उनके घर के बाहर देशद्रोही लिखा आम आदमी पार्टी के लोगों ने पंजाब पुलिस की मदद से।
14: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की है। उन्होंने राघव चड्ढा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा में शामिल होने का मतलब कार्रवाई से बचने की गारंटी नहीं है।
19: कि जे उन्होंने कोई गलत काम किया होया तो बीजेपी जाने का मतलब ये थोड़ी है कि कानून तो उपर हो गए हो। जे बीजेपी चले गए तो यह मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने कोई FIR ही नहीं हो सकती या उन्होंने कोई मुकदमा नहीं चल सकता, उन्होंने कोई सुरक्षा कवच मिल गया।
14: उल्लेखनीय है कि अगले साल के शुरुआत में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बार भाजपा यहां चुनावी सफलता हासिल करने के लिए अभी से तैयारियों में जुट चुकी है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
2: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील और अगर आप इंडिया रिपोर्ट जो अभी अभी हमने आपके लिए प्ले करी या और भी कोई भी ऑडियो कार्यक्रम सुनना चाहते हैं एक बार फिर से तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं sbs.com.au/hindi और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर लाइक और फॉलो करिएगा जहाँ आपको ना सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट बल्कि कम्युनिटी स्टोरीज और ढेर सारा कॉन्टेंट और रील्स भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एड ब्रेक लेंगे, लेकिन एड ब्रेक से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि 8 मई को हम एक बहुत ख़ास शो कर रहे हैं मदर्स डे से जुड़ा, और उसमें हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास तौर पर होंगी डाइटिशियन पूर्वा गिलानी जो आपके सवालों का लाइव जवाब देंगी शो में। तो अगर आपका कोई भी सवाल है माओं की डाइट से रिलेटेड, रिकवरी, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े तो आप अपने सवालों को तैयार रखिए और हमें फ़ोन ज़रूर करिएगा 5 से 6 बजे के बीच उस शो में। 04397997667 हमारा नंबर है और आप हमें अपने सवाल पहले से भी भेज सकते हैं, तो आप अपने सवाल पहले से भी भेज सकते हैं। और अब लेते हैं एक एड ब्रेक, एड ब्रेक से वापस आकर कुछ और रिपोर्ट्स और कुछ गाने आपके लिए प्ले करेंगे। सुनते रहिए SBS हिंदी।
7: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
20: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
7: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
21: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
22: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
22: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
23: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
24: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
7: Landyu gets lost in his office building.
25: Man, why does every floor look the same?
7: Boatyu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
25: Man, getting lost out here is the best.
7: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
25: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
2: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एड ब्रेक के बाद मेरा नाम है नबील और अब बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ। ये रिपोर्ट है महिलाओं से जुड़ी हुई जो ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती हैं, काम करती हैं। ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल वुमेन अलायंस ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें सामने आया है कि ऑस्ट्रेलिया में 3,40,000 से अधिक प्रवासी और शरणार्थी महिलाएँ अपनी योग्यता से कम स्तर की नौकरियों में काम कर रही हैं। सिर्फ 41% महिलाएं ही अपनी क्वालिफिकेशन के अनुरूप जॉब्स में हैं। इस रिपोर्ट में एक प्रवासी महिला के अनुभव और विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। पेश है नताशा कॉल की ये रिपोर्ट।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। उच्च शिक्षा और बेहतर योग्यताओं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी महिलाओं के पास अक्सर वर्षों का पेशेवर अनुभव भी होता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं और कौशल के अनुरूप अवसर मिल पा रहे हैं। तो हाल ही में एक जारी की गई नई रिपोर्ट बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में करीब 3,41,500 प्रवासी और शरणार्थी महिलाएँ अपनी योग्यता से कम स्तर की नौकरियों में काम करने को मजबूर हैं। ये स्थिति तब है जब इनमें से हजारों के पास उन पेशों के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं जहां गंभीर कौशल की कमी है, जैसे शिक्षण, नर्सिंग और इंजीनियरिंग। ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल वुमेन्स अलायंस ने सेटलमेंट सर्विसेज इंटरनेशनल के साथ मिलकर जारी की है, जिसका शीर्षक है एक्टिवेट हर स्किल्स। रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के कार्यबल जरूरतों और उपलब्ध कौशल के बीच गहरे अंतर को उजागर करती है। प्रवासी महिलाओं के सर्वेक्षण पर आधारित इस रिपोर्ट के अनुसार केवल 41% महिलाएं ही अपनी योग्यता के अनुरूप काम कर रही हैं। और यही नहीं, वे समान योग्यता वाली ऑस्ट्रेलिया में जन्मी महिलाओं की तुलना में 31% कम कमाती हैं। सर्वेक्षण में शामिल हर 3 में से 1 महिला ने कहा कि वे अपने कौशल से जुड़े पेशे में लौटना चाहती हैं।
4: मेरा नाम सरिता है और मैं मेलबर्न में रहती हूँ। एक उज्जैन से मध्य प्रदेश की नगरी, महाकाल की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी में से छोड़कर मुंबई में आके और फिर यहाँ मेलबर्न में अपना एक नया जीवन 25 सालों से अपने करियर, विच इज जो इंडिया में मैंने म्यूजिक और क्लासिकल, लोक संगीत, सितार, इतने सारे गुरुओं को सीखकर और जब मैं यहाँ पहुंचती हूँ तो ये मेलबर्न क्या कहूँ कि बहुत ही स्ट्रगल है, बहुत तकलीफ होती है कि आज 25 सालों के बाद भी पूरी लाइफ यहाँ पर आपके सहजीरे ने अगले 11 तारीख को 49 ईयर्स की होने जा रही हूँ। तो आप यूं कहिए कि मैंने 25 साल इंडिया में और 25 साल यहाँ निकाला है, उसके बाद भी एक अपनापन बहुत मुश्किल होता है और वही ढूंढ रही हूँ, अभी भी कोशिश कर रही हूँ। और चलो मेरी बात छोड़ो कि चलो मैं म्यूजिशियन हूँ, ठीक है, मैंने पूरा क्लासिकल सीखा है, मैंने पूरी पढ़ाई में बता रही हूँ ना, मैंने डबल मास्टर किया इंडिया में आके, फिर यहाँ आके फिर मैंने मोनेश यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तब भी वही स्ट्रगल था कि वहां पर कोई टीचर ही नहीं है भाई हमें हमारे सिखाने के लिए। और वुमेन आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग, लेट्स बी ऑनेस्ट, व्हाई Why महिलाएं क्यों always, हम क्यों नहीं, हम हर फील्ड की, चाहे बोस्नियन देख लो, चाहे ईरानियन देख लो, चाहे अलग देश, क्योंकि हम देखा जाए तो हम सब तो अपने अपने पेरेंट्स को, कहीं अपने कल्चर को छोड़कर हम मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया में आके बसे। तो
1: ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल वुमेन्स अलायंस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मालिनी राज इस रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें हमसे साझा करती हैं।
5: Sure. So the report shows that more than 340,000 migrant and refugee women in Australia are working well below their skill level. This is not because they lack capability, but because the system designed to recognise their qualifications is broken. It's costly, it's confusing, and it's built around assumptions that don't reflect their lives. And so of those 340,000 migrants, 20% of them are more likely to be underutilized than migrant women and earn 31% less than an Australian-born woman with the same qualifications. I think, so we heard from about 64 women across Australia, many in their prime working years across qualifications in health, engineering, psychology and education. And many of them had tertiary and postgraduate qualifications and years of professional experience. So these are women who are highly skilled, highly motivated and ready to contribute, but they are just not being recognised here. And one thing really highlighted was the human impact of the... the skills recognition issue in terms of women telling us that their qualifications had become worthless, their careers on hold, their professional identities erased, and that led to anxiety, loss of confidence, and the feeling that their skills were rusting. And in some cases, they were increasingly susceptible to being vulnerable and to financial and domestic abuse. So the impacts are far-reaching, but also it's the fact that we have a skills shortage in this country. There are hospitals that have longer waiting lists. There are schools that don't have enough teachers. And we have this ready-made workforce here who are invited to the country based on their skills, and we're not able to utilise them. So right. I think that, there's a huge productivity gain hidden in plain sight here.
1: कई नियुक्ता मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में काम का अनुभव जरूरी है, भले ही उम्मीदवार के पास विदेश में लंबा और मजबूत अनुभव हो। जब तक वे लोकल एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर लेती, तब तक उन्हें अपने पेशे में वापस आने का मौका नहीं मिलता। तो क्या लोकल एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ी चुनौती है, या फिर ये एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है जो मिलकर उनकी स्किल आधारित नौकरियों तक पहुँच को सीमित करता है? मालिनी राज बताती हैं।
5: Yes, I think that we saw that, there is a element of, structural, and there's an intersection of structural and racism and sexism here in a system that demotivates, devalues and delays. So qualifications, experience, accents, names, countries of origin are really, we saw that they're read through a lens of lower credibility. And so... there is that discounting of expertise gained elsewhere. So in addition to, advocating for the government, we need to advocate to employers to see that this experience is a benefit to them. They were invited into the country based on their skills, and to kind of, utilize them, because the diversity perspectives that they bring, it is a productivity gain.
1: तो क्या अगर इस समूह को उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार सही नौकरियों में लाया जाए, तो क्या ये ऑस्ट्रेलियाई इकोनॉमी के लिए स्पष्ट रूप से एक बड़ा लाभ हो सकता है? मालिनी राज बताती हैं।
5: Well, SSI has done an Activate Australia Skills Report, which is the broader study that was done, which this builds on. Mm-hmm. And their study showed that if all the migrants were working at their skill level, it would add $9 billion to the economy.
1: तो इस रिपोर्ट में इन महिलाओं की स्किल्स का सही उपयोग करने के लिए कई सुझाव कई स्तरों पर दिए गए हैं।
5: I think that this is not a future workforce pipeline. They are a workforce already here. So they are trained, they are experienced, they are ready. So we are calling for the government in the next budget to a number of recommendations, but one is a national oversight body, a national commissioner, because a lot of the struggles is the complex processes that are really hard to navigate and they're not intuitive. So having that oversight body would help a lot of that navigation.

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: धृत जी मैसेज करते हैं और उन्होंने गाने की रिक्वेस्ट करी है मेरे सामने वाली खिड़की में, और ये रिक्वेस्ट हमने नोट कर लिया है। मुझे देखना होगा क्या वो आज मैं आपके लिए प्ले कर सकता हूँ, नहीं तो हमारी टीम आपके लिए ज़रूर वो प्ले करेगी, आज नहीं तो कल के किसी शो में। और उनका एक और मैसेज आया कि हाउ टू सरप्राइज़ मॉम्स ऑन मदर्स डे। वेल, इसके बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, और जिन सवालों की हम तलाश में हैं वो है न्यूट्रिशन से जुड़े। ये मैसेज आया है उस रिस्पॉन्स में जहाँ मैंने आपको बताया था कि 8 मई को हम एक स्पेशल शो कर रहे हैं, टॉक बैक लाइव शो SBS हिंदी पर, एक डाइटिशियन पूर्वा गुलियानी के साथ जो हमारे साथ स्टूडियो में होंगी, और उनसे हम सवाल पूछेंगे माओ के से रिलेटेड और उनकी रिकवरी से, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड। और अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो 0439-799-767 पर आप मैसेज कर सकते हैं, और हम ये भी चाहेंगे कि आप कॉल करें ख़ास तौर से 6-8 मई के शो में, और आपके सवालों का लाइव जवाब देने की हमारी कोशिश होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक गाना प्ले करते हैं, और गाना प्ले करने के बाद एक एड ब्रेक, और फिर मैं वापस आऊँगा एक आखिरी रिपोर्ट के लिए। तो एंजॉय करिए ये गाना, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, सुनते रहिए SBS हिंदी।

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: SBS Hindi हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें, किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
8: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील और अब शो की एक आखिरी रिपोर्ट। सिडनी में चाय बार की एक ऐसी पहल चर्चा में है जो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का एक नया तरीका बनती जा रही है। इस चाय बार की शुरुआत एक पूर्व सैनिक ने की है। मसालों से बनी खास चाय और अलग अलग जगहों से आए लोगों की कहानियों के साथ ये जगह खास बन जाती है। आइए सुनते हैं इसी के बारे में थोड़ा और। एक पूर्व सैनिक द्वारा शुरू की गई खास टी बार्स यानी चाय की दुकानों की चेन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अम्बीज चाय में खास मसालों से बनी चाय मिलती है और इसके संस्थापक को गर्व है कि उनके कैफे लोगों को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन।
9: Hey Bill.
10: Andy, how are you?
9: Very well. What are we doing today?
10: My favorite, the Amritsar place.
9: Absolutely.
8: ये चाय बार अम्बी का है जिन्हें अमरजीत सिंह थिन के नाम से भी जाना जाता है और वो ब्रिटिश सेना में रहे हैं।
9: I do give a free chai to veterans and serving members of the armed forces because I too am a veteran and it's my way of giving back.
8: अमरजीत सिंह थिन की कहानी कई देशों तक फैली हुई है। वो पूर्वी अफ्रीका के कीनिया में पंजाबी माता पिता के घर जन्मे थे और उनका कहना है कि सरकारी दबाव के कारण उनके परिवार को वहाँ से जाना पड़ा।
9: We had to leave because we were British passport holders. The plane actually was on the runway, and I remember my dad and I, the two of us, were running to board the flight, the last plane out of Nairobi.
8: वो लंदन में बड़े हुए और बाद में सेना में भर्ती हो गए।
9: So in 1979, finished my basic training. We then got deployed into Germany, into one of the RAF bases where we maintain the communication centers and this was during the Cold War as part of the British Army off the Rhine.
8: 1989 mein Australia aane ke baad Amarjeet Singh Thin ne IT prashikshan ka vyavsay shuru kiya aur ek mahilaon ki hockey team ko coaching de rahe the jab chai peene ke unke shauk ne unhe dusron ke liye chai banane ki aur prerit kiya.
9: After the training sessions, sitting there and admiring the flavors and the spice, the smells of the chai, and they wondered what it was. I said it's chai.
8: गरम दूध में खास मसालों को मिलाकर बनाई जाने वाली ये मसालेदार चाय कई दक्षिण एशियाई समुदायों के लिए खास महत्व रखती है। अमरजीत सिंह थिन का कहना है कि कॉफी के विकल्प के तौर पर चाय की लोकप्रियता यहाँ भी तेजी से बढ़ रही है।
9: स्ट्रॉन्ग फ्यूजन विद अफ्रीकन स्टाइल स्पाइसेस, पंजाबी स्टाइल कुकिंग, एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस यूनिक। नो वन डज व्हाट वी डू।
11: दिस इज अ मसाला चाय एंड यू फील इट डाउन द बैक ऑफ योर थ्रोट। It's not a gentle drink. It's more hand-to-hand combat.
8: उनका कहना है कि उनकी चाय उनकी विविध जीवन यात्रा से गहराई से जुड़ी हुई है। कठिन आर्थिक समय के बावजूद अमरजीत सिंह थिन ने अपनी चाय को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया है। पिछले 7 वर्षों में उन्होंने न्यू साउथ वेल्स और ACT यानी कैनबरा में 4 चाय बार्स खोले हैं और 5वें की भी शुरुआत होने वाली है।
9: The secret to my success really is the authenticity of my chais, the brewing of my chais. There was really no authentic brewing of chai. Chai was always powdered, some sort of syrup, thrown with a bit of cinnamon in there. Our chais are handcrafted, mix all the spices, brew it with water, add milk, and then serve it that way. So it's very, very authentic, just how mum would have done it. Well, we will continue to grow. Canberra is going to be the next second spot we're opening up in Canberra. We want to be in Melbourne this year, and then I need to be in the UK next year. That's the plan.
8: Unki chai mein bahar se mangaye gaye masalon se bane ek darjan se adhik anokhe swaad shamil hai.
9: Spices typically come from all sorts parts of the world. You've got India, Sri Lanka, Afghanistan, you've even got stuff coming in from Guatemala. The most popular chai right now is the Amritsar. It comes from the streets of Punjab, strong in ginger and cardamom. The sweet tooth, we've got Maddy's Mzungu chai, which is flavored with chocolate and pepper.
8: Aur phir hai unki sabse khas Ambis chai.
9: And that's where it all started. It's strong in pepper, strong in ginger, and very sweet.
8: ग्राहक ऐश पैरो का कहना है कि ये चाय बार सिर्फ चाय पीने की जगह से कहीं ज्यादा है
12: Feel of a bar, but it's chai, it's not alcohol, and so it's a nice place to come and spend time and connect with other people.
8: लगातार युद्ध की खबरों के बीच अमरजीत सिंह थिन को उम्मीद है कि उनके चाय बार एक अशांत दुनिया में थोड़ी शांति दे सकेंगे
9: I'm very proud of bringing people closer. Over a chai, we sit down, we chat, we meet, we talk, and get to know each other. I'm very proud of that.
8: ये रिपोर्ट SBS स्मॉल बिजनेस सीक्रेट्स के लिए सैंड्रा फुलोन और SBS न्यूज के लिए एलन ली द्वारा तैयार की गई है SBS हिंदी पर इसे आपके लिए प्रस्तुत किया नबील हसन ने आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मेरा नाम है नबील और शो के कुछ मिनट रह गए हैं जिसमें हम आपके लिए कुछ गाने प्ले करते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और अगला गाना जो बहुत पुराना है बहुत प्यारा है और आपको ज़रूर पसंद आएगा जादू है तेरा ही जादू है आइए प्ले करते हैं बने रहिए SBS हिंदी के साथ इसके बाद एक और गाना आपके लिए आएगा जादू है तेरा ही जादू है

SBS हिंदी पर मैं अब आपसे अलविदा लूंगा, लेकिन अलविदा लेने से पहले दो छोटे से मैसेजेस पढ़ देता हूं। पराग जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सेगमेंट ऑन अम्बीज चाय, जो हमने आखिरी वाला चाय बार की बात की थी। और हेमलता पुरोहित जी लिखती हैं कि वेरी नाइस प्रोग्राम एंड शी इज़ हैप्पी कि इस फ्राइडे को हम लोग एक स्पेशल शो कर रहे हैं मदर्स डे के अवसर पर, जिसमें SBS स्टूडियो में डाइटिशियन होंगी पूर्वा ग्लानी और आपके हम सवाल लाइव लेंगे फ़ोन कॉल पर, तो ज़रूर ट्यून इन करिएगा। और 04397997667 हमारा नंबर है, उस पर आप ज़रूर कॉल करिएगा। चलिए अब मैं आपसे लेता हूँ अलविदा और मैं आपसे मिलूँगा एक बार फिर बहुत जल्दी एक नए शो में, और तब तक सुनते रहिए SBS हिंदी। एंजॉय करिए ये आखिरी गाना।

0: The Bollywood Session on SBS South Asian.
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो.

0: साउथ एशियन।
1: चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे, आज तक यही झूठ कहा था तुमसे। चलो अब सच बता देते हैं।

कांटे कांट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमाल है। सारा पूछूं आज किसका ख्याल है, रेत की रानी है किससे कमाल है। सुरमय भरी वो है बला, देख के उसको जमाना जला। माया का जाल है उसकी कला, उसके इशारों पे मैं हूँ चला। जब वो चले संसार झुके, जब वो मुड़े तरनी बहे, जब हाथ उठाए आंधी रुके, जब पल के झुकाए तो वक्त रुके। डरता करता फिर भी है मेरा मन, नाम सुन के बढ़ जाए धड़कन। मिट्टी पे पड़ जाओ उसके कदम, करते सक जमीन को फिर से नरम।

समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए जहर। असलिया चेहरा उसे सब है पता, चाल है गहरा उसे कुछ न छिपा, दिल है जो ठहरा उसे नहीं है पता, क्या तेरी माया जरा मुझे भी बता। ढूंढू मैं उसको कहां, होठों पे जिसके लिपटा जहां, इतना दर्द क्यों मैंने सहा, जब मिलने ही थे दोनों जहां। रुक गई मेरी सांस भी, महसूस करने की आस भी, खुल जा मुझ में जैसे चाशनी, कट गई ये साली रात भी।

we go. Hit. After hit. After hit. This is SBS South Asian.

पुष्पा पुष्पा पुष्पा।